नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमरीका के विदेश मंत्री

0: मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral meeting with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues, including issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting. He called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Modi asserted that India and the US will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peace

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा रणनीतिक

0: औद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को

0: फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व

0: रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
1: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई है। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
0: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा।

0: हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
2: नमस्कार श्रोता मित्रों।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराते ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराते क्या है सर?
2: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके, और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं, तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है, और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं, तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
1: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते हैं?
2: नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे, और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं, तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं, तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है, और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं, और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ाबेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का छोटा जो रण है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं, और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है, वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका

0: वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, कच्छ के बाघ में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहाँ पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह।

0: आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं। और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है। तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट, काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था,
0: कच्छ के महाराव ने
2: जी, फिर महाराव खेंगा III इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
0: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
0: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
2: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख, हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
0: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
2: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है।

0: तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो. ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है. इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है. कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है. शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है इन फ्लेमिंगोज की. जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है. जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है. तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है. तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है. तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं.
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है. डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाप की संख्या, तो ये सुरखाप की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं. साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं. पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है.
1: श्रोताओ फ्लेमिंगो सुरखाप की विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए.
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है.
1: बिल्कुल प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत.

0: पोस्टबॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखाब फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनके भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
0: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का, तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
0: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक

0: पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है। तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं। थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे।
0: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है।
0: जी,
1: और इससे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंद का एक गीत भी आप बताइए।
0: छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराती और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घोराड है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
1: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है, और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
0: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराट है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी

0: में जंप स्टार्ट टेक्निक, ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहाँ पर जो मादा घोराड़ हैं तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
1: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन से सावचेतियां रखनी पड़ती है?
0: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
1: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए जी। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
0: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साहब ने बताया था कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्सीटू भी चल रहा है। एक्सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग

0: वाइल्डिंग करें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है. उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको वह छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें. तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे. पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो. और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए.
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में. तो ये घुराड़ के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए. ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा. तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा. तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें. फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है. फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं. फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है. फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी.
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के 5वें एक जो वेटलैंड्स है जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है. तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में घुराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तो साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए.
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में हैं, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं. वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं. तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है. उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है. तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है. बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है.
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घुराड़, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की. इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे. आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार.
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण. कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन

0: बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सरकार इंडिया को वालम शपिए का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनपन को बोरे की येंग तक बपन मी ही का बोर्डिंग इलेक्ट्रिक
2: लिंगबाग ने की स्कीम खिला बनपन शंग या का सोलर हलर तुम येंग जो भी हा का बग सरकार प्रेंग रोकना जिंगे रा पिसा अंडा ला डब का काम नागबंता शी किलोवाट का बोर्डिंग पिनियो लाइकुला हजार तंका नागबंता आर किलोवाट पिनियो अंडरपुन रो हजार तंका बट नागबंता लाइक किलोवाट पिनियो प्रपसन हजार प्रस्पा तंका
1: Kebesok ban apply, let's go website www.pmsuryaghar.gov.in. Jadi kini nong dia belar register. Apply from dah kebesok nak ke bank jong pi om dan kam dikiwai ki kot kisla.
2: What pun lah ni?
1: Kini ke scheme kan don tang hadu ke life way terik ulu bayar arajal arpenyo. Ben kubor ya laki yang, ben duna jinglut, bat yadaya kemar yang.
2: Naga benda kejimta bakam niya lesh ke office bacantam jong assistant executive engineer. Distribution Subdivision ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited and iko office Chief Engineer Project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.
3: Want to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo, or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.
4: She's Palai Point Room Megahertz, Akashvani FM, Jongpi Parlok Hidan Batngai, RJ Erika Haka Program, Fun Unlimited. Te Parlok Ngalayok Shushu, Ngalayok Kini Kijubab Ki Jongpi, Kini Kewe Ke Ong Kumni. Ladei Kerdab PRJ Da Amdei Ngan Persyang Biang Manga Iba Hep Na Rangsau. Ta Kumdei Shubun Ba Hep Na Amta Kini Kijubab Ke Jongpi, Te Ngarang Sedang Kini Ke Program, Kumta Ngidang Bun Ke Por Mo. Te Kumta Ngan Airu Kalat Ya Pi, Bat Kiwi Ke Parlok Jongpi Mo, Lani Ke Parlok Jengi Borok Ke Bias Ngap Hani Ke Por, Bakin Aya Kijubab Ke Jongki. Lada Kalong Ar Ne Lai, Kat Bap Hidan Di Kijubab Mo, Bapi Kuat Ban Gas Mo, Lani Ban Persyang, Pila Ban Ai, Ban Pak Show New Number, Kendai Sao Prasan Iwe Not, Ar Lai Iwe Iwe. Te Kani Kwe Kijubab Pat Ke Ong Kum Ni. Ladei ki jingkhang yet PRJ manga i duduk. Tak boleh sebut duduk nam tangan ni ke jubab ke jong pi. Dia perlok nam tangan kita ke perlok ke jingi ke bidang syusengap ya ke program.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Under 3.6 megahertz, Akashvani FM. Jumpy friends, you're with me, RJ Erica, in our program Fun Unlimited. Well, my dear friends, I have received more of your

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ

0: राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित

0: वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सरकार इंडिया को वालम शपिया का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनपन को बोरे की येंग तक बपन मी ही का बोर्डिंग इलेक्ट्रिक
2: लिंबा के स्कीम खिला बनपन शंग या का सोलर हलर तुम येंग जो भी हा का सरकार प्रेंग रोक ना जिंगे रा पिसा अंडा ला डब का काम ना के बंता शी किलोवाट का बोर्डिंग पिन्यो लाई पुलाई हजार तंका ना के बंता आर किलोवाट पिन्यो अंडरपुन रो हजार तंका बाद ना के बंता लाई किलोवाट पिन्यो प्रपसन हजार प्रस्पा तंका
1: Kebesok pun apply. Let's go website www.pmsuryaghar.gov.in. Jadi kini nong dia belar register. Apply ram dah kebesok nak ke bank jong pi om dan kam dikiwai ki kot kisla.
2: What pun lah nai?
1: Kini ke scheme kan don tang hadu ke life way terik ulubayar arajal arpinyo. Kan ku bori laki yang. Kan duna jinglut bat yadaya kemar yang.
2: Nak ke benda kejimta bakam niak lah syuk office bercantam jong assistant executive engineer. Distribution Subdivision ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited, and ko office chief engineer project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सरकार इंडिया का वालम शपिया का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनपन को बोरे की येंग तक बपन मी ही का बोर्डिंग इलेक्ट्रिक
2: लिंगबाग ने स्कीम खिला बनपन शंग या का सोलर हलोर तुम येंग जो भी हा का सरकार प्रंग रोक ना जिंगे रा पिसा अंडा ला डब का काम ना का बंता शी किलोवाट का बोर्डिंग पिनियो लाई पुलाई हजार तंका ना का बंता आर किलोवाट पिनियो अंडर पुन रो हजार तंका बाद ना का बंता लाई किलोवाट पिनियो प्रपसन हजार प्रस्पा तंका
1: Kebasok ban apply. Let's go website www.pmsuryaghar.gov.in. Jadi kini nong dia belar register. Apply ram nak kebasok nak ke bank jong pi om dan kam dikiwei ki kot kisla.
2: What pun lah nai.
1: Kini ke scheme kan don tang hadu kalai kuwei terik ulubayar arajal arpinyo. Ben kubori laki yang. Ben duna jinglut bat yadaya kemariang.
2: Nak ke bentak jinta bakam niat lah syuk office bercantam jong assistant executive engineer. Distribution Subdivision ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited, paniko office chief engineer project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 1,04,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी

0: कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार

0: संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने

मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।